इलेगल गया आफ्टर वर्ड आउट सक्स हो गया मैं आपसे निराव चाओ के ना उन्होंने बुग में पी बल्ले पैनिक पता सिला लग गया ना आप लोगों ने तमाने की बल्ले में अम्मा के चंग में नहीं तुसंग ना तम्मा लो तलो तुंग सुला में गिट्सी तेरे साइक्स में